अगर हर इंसान घट घट में बसे ईश्वर को जान ले तो संसार में स्वार्थ, अभिमान, द्वेष और हिंसा जैसे कई अमानवीय तत्व समाप्त हो जाएं। अगर हम अपने से निर्बल जीवों से प्रेम करने लगें, दुखियारे जरूरतमंद लोगों में दरिद्र नारायण का भाव रखकर उनके आवश्यकताओं को पूरा करें तो ये ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा। इसीलिए वेदों, उपनिषदों और सभी धर्म ग्रंथों ने दान की महिमा को सर्वश्रेष्ठ माना है। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ज्ञान दान, यहां तक कि जीते जी अंगदान करके परमात्मा के प्यार

शक्तियों ने इतिहास रचा है। आज के युग में नेत्रदान से लेकर मृत्यु के पश्चात देहदान के प्रति लोगों में काफी जागरूकता दिखाई देने लगी है। हर तरह के दान में गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ है। हम इस प्रकार दान दें कि हम में अभिमान ना आए, ना दान लेने वाला ही स्वयं को हीन समझे। श्रेष्ठ दान तो वो है जिसमें दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता भी ना चले।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि तदानुसार 28 जून 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मुड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी

0: में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल
6: जी। लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है। हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस। महसूस हुए। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे।

प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सलाम नमस्ते आदाब अपनी हम सब के स्वागत करे से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम पुरानी फिल्मी गीत। तो पुरानी फिल्मी गीत थे अपनी खान फर्स्ट गीत और पहला गीत होनी से तेरा मुझसे फ्रॉम द मूवी आ गले लग जा। और आ गले लग जा ला गाना होनी चले मुझे एकदम याद एकता है से पुराना गाना एकता तो इतु गाना बचाओ। एंड यस यू आर ट्यून इन टू द स्टेशन ऑफ द रीजन AIR FM Tracopan 103 MHz। मैं हूँ आपकी आरजे टिया आपकी होस्ट आपकी दोस्त और ये प्रोग्राम चलेगा अभी से लेके 10 बजे 10 10-20 तक। यस 10-20 तक जहाँ हो तो इतना भी मोहन 40 मिनट निशना दो प्रोग्राम दे ऐसे तो गाना बाल बाल ही बजाई थकी वो। एंड यस माई डियर लिसनर्स अपनी हम भी इतना ही तो प्रोग्राम होने ऐसे को ले दो मैसेज लिखी कि ना पता बोले मन जाए को ले दो 9436805333 9436805333 दे लिखी कि ना पता बोले भी पारे वो। सो यस माई डियर लिसनर्स नेक्स्ट गीत तो दिए से वो कौन थी फिल्म पर 1964 लगा से एकदम पुराना गाना से इतु गाना दो कोई कुबो को लेते 60 ईयर ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो जैसे। सो या लता मंगेशकर और मदन मोहन लगा म्यूजिक लता लगा आवाज और बोल लिखे है राजा मेहंदी अली खान लग जा गले फ्रॉम द मूवी वो कौन थी।

कविता कृष्णमूर्ति और मनहर लगा वास्ते हुनी थे किसे सौदागर मेरे सौदागर फ्रॉम द मूवी सौदागर। तो यस माय डियर लिसनर्स प्रोग्राम ते आई थिंक 14 मिनट बचे कि से तो आई हैव सम वंडरफुल सॉन्ग्स। तो बिफोर आई प्ले दिस वंडरफुल ट्रैक्स हियर आपने खाना मैसेजेस लिखे तो जी हुई भी पूरी मन जाए।

Likikina Pataya say Sakato Akato, I mean Akato from the Mapul Taikwe say thank you so much for playing my favorite tracks. I hope you have a great day. Kushito, thank you so much for writing in and I wish you the same. सुबह सुबह इतनी खूबसूरत गीत सुनाने के लिए दिन मेरा हसीन हो जाता है. ऑलवेज ऑल इज गोल्ड. कुनालिकशे ग्रेट प्ले लिस्ट. थैंक यू सो मच हमारा दिन खूबसूरत बनाने के लिए. कुनालिकशे सबीना बेगम फ्रॉम सरुपथार गोलाघाट असम. इतनी खूबसूरत मैसेज लिखने के लिए थैंक यू. नेक्स्ट मैसेज तो मुझे लिखी कि ना पता है ऐसे आई हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट होली भी इट आज रिक्वेस्ट प्रोग्राम न हो पुरानी फिल्मी गीत ऐसे होली भी चिंता न करी भी अपनी खान रिक्वेस्ट प्रोग्राम बताई ले दो जी हुई भी बजाई दी वो. नेक्स्ट मैसेज मुझे लिखे ऐसे ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग एंजॉइंग योर प्रोग्राम रमेश पात्रो रोनू पात्रो दीपंकर लबानिया और लकी फ्रॉम गोलाघाट पर लिखी कि ना पता है ऐसे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल मैसेजेस. तो प्रोग्राम ते नेक्स्ट गीत दिए से अलका और मनहार उदास लगा आवाज ते ही जान ओ मेरी जान फ्रॉम द मूवी जान.

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान

मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो,
लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को
स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में
एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें। इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान
बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है।
राजगढ़ में पिछले कुछ महीने

0: खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ইটো সফলতা খান্দ হইলে দেশ লাগা সুরক্ষা আর আত্মনির্ভর ভারত ওপরে থাকি আছে। অলপদিন আগতে মই কলকাতা দে নৌসেনার লগতে জোড়াই কিনা থাকা একটা কার্যক্রম দে সামিল করবলে আবসার পাই থাকি আছে। তাদের INS দুনা

जी हाँ डियर लिसनर्स, एक मैं हूँ और एक है आप सब, और आई रियली वांट टू बी विथ यू टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ रहेंगे टिल द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम. तो अपनी गान होनी देखिए, एक मैं और एक टू, आज दो अनरेटेड सॉन्ग्स का नहीं होनी ऐसे. तो दैट वॉज द टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी. मूवी भी हो अनरेटेड ऐसे. इफ यू हैव नॉट वॉच द मूवी, करीना कपूर एंड इमरान खान ओलाइन गई तो फिल्म दे. यस आई थिंक आई एम करेक्ट. एंड या इट इज अ रियली फन रोम कॉम निशना से, बट यू नो होलप इमोशनल भी ऐसे. सो इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ मूवीज, होलप रोम कॉम बट यू नो एक्सप्लोर सम इमोशनल एरियाज ऑफ लाइफ, दैन यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट मूवी. अंडर रेटेड सॉन्ग ऐसे एंड पॉपुलरिटी तो इमान तो पाना ही तो गाना दे होली भी. इफ यू कैन लिसन टू द ट्रैक एंड यू कैन फील द अमित त्रिवेदीज कंपोजिशन, ही हैज अ वेरी वेरी यूनिक कंपोजिशन स्टाइल. इतिहास तो ताई बिशी फेमस हो जाए ऐसे. ही इज वन ऑफ द टॉप आई थिंक म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री. But initially, you know, you can feel his freshness in the track. And that song was sung by none other than Benny Dayal and Anushka Manchanda. Tahala effortless vocals so nigina. You know, you get this very feel-good vibe. So that was Ek Main Aur Ek Tu from the movie Ek Main Aur Ek Tu by Benny Dayal and Anushka Manchanda. Alright, dear listeners, program te next geet na baja ko te. I have few messages. I really, really love reading your messages. Tapni hala messages ko ma puri de ase. Mugi likhi kina pata ase. Poonam baby. Alright, Poonam baby. Bishi din bishi apni la message paise. Tai likhi ase. Good afternoon, RJTia. Ma to pura enjoy kar rahi hoon. Aapke songs, aapke choice bahut acche hai. Koi na likhi ase. So Poonam from Bokajan, thank you so much for writing in. Next message to likhi ase. বর্ণালী কনোয়ার চুঙ্গা জানপ্রা আর প্রোগ্রাম শুনি কিনা এনজয় করে আছে. সে রিকুয়েস্ট পাঠাই আছে বলে বি তো রিকুয়েস্ট প্রোগ্রাম নহয়, বাট মই মিট করে আছে দ্যাট দ্য সংস দ্যাট আই এম প্লেইং আপনি খান এই গানা গান শুনি কিনা খুশি পাই থাকিব. মিনার খান ফ্রম ডিমাপুর টাইপি কয়ে আছে, গুড আফটারনুন আর জে, আজি লাগা প্লে লিস্ট তো বেশি ভাল আছে শুনি কিনা বেশি এনজয় করে আছে সে. বোকা চানপ্রা অভিজিত পে লিখে আছে, আর জে টিয়া হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ, ওয়েন আই ক্লোজ মাই আইস অ্যান্ড লিসন টু ইউর মিউজিক ইট ফিলস অ্যামেজিং লাইক আই I'm losing myself completely. Oh, that it should be the vibe. Thank you so much for writing in, Abhijit. Salam, namaste, RJ. Apni laga gana huni kina bishi bhal lagi ase. Gana hanto ini ka hi bhal bhal bachai thaki. Bikuna muige likha kina pata ase Sabina Begum, Romas Patro, aro shikari rong par itu kan sob mili kina mugi message kore se. Thank you so much. So guys, messages kan do iniga hai pathai da gibi program the next git dsa, and this is a personal favorite of mine, RJ's choice se do mila favorite songs kan kwanishna all the tracks that I'm playing out sab kuch dil se hai. To itu gana se Bangistan bra Ram Sampat aro Abhishek Naiwala awaz te. Aritu ganato, the title of the song is called Hogi Kranti. So it's a very quirky song, I say, but yeah, very energetic, I say. But the interesting thing about this track is, is gaane mein humor bhi hai aur satire bhi hai. You know, it is very catchy but meaningful, I say. And if you don't know Ram Sampat, he is a wonderful music director, also a singer himself. Taila ganade holo raw energy, realism bhi thage. And you can really connect to the lyrics, to the style, to the voice. So yeah, let's enjoy this awesome, awesome track. Volume ko thora baraiye aur enjoy kijiye Hogi Kranti from the movie Bangistan. Ram Sampat laga awaz ase, music pe tahi dishe Puneet Krishna bra lyrics to likhishe. And yes, along with Ram Sampat, we get Abhishek Naiwal. So this is Hogi Kranti.

kan hunia se Akashvani Kohima FM Chakupan 103 megahertz de to Hindi film songs program RJ's Choice to continue kura hase aro itia RJ's Choice program de holop mood to holop change kribo koi moi beginning of the program de bhi kuishe that we will be listening to zabardast fun tracks but romantic songs bhi hunia hobo to aji laga RJ's Choice program te romantic songs kan hunio nimite mood ko thoda badalte hai aur dil se jo gaane बहुत ही खूबसूरत गाने जो आपके आरजेटिया ने आपके लिए सिर्फ आपके लिए चूज किया है वो सुनते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी मुस्कुराहट हो, थोड़ा सा मेलोडी आपके दिल को भी जरूर छू देगा. तो प्रोग्राम ते दिए से फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी अरिजीत सिंह अमित त्रिवेदी लगा म्यूजिक से कौसम लगा लिरिक्स से दिए से तारीफों से. तो It is a beautiful, beautiful song. I hope you will enjoy. और इसी के साथ हम शुरू करते हैं रोमांटिक गीतों का ये खूबसूरत सिलसिला.

धूप के मकान सा फ्रॉम द मूवी ब्रेक के बाद शेखर रविजानी सुनिति चौहान और कारा लिसा लगा आवाज ते अपनी कान होनी लिखे म्यूजिक दिशे विशाल शेखर और लिरिक्स लिखे प्रसून जोशी। तो विशाल शेखर तो अपनी कान सब जाने ऐसे वंडरफुल म्यूजिक कंपोजर्स का नसे एंड विशाल दो ही सिंग्स अ लॉट ही हैज दिस रॉक स्टार वॉइस बट आई पर्सनली लाइक व्हेन शेखर सिंग्स एटू गाना दे दो शेखर हिमसेल्फ हैज संग द मेल लगा पार्ट टू तैयार कुछ है और वो बहुत ही अच्छे से गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट एफर्टलेस और बहुत चार्म एकता से। सो या दैट वॉज अ पर्सनल फेवरेट फ्रॉम द मूवी ब्रेक के बाद शेखर रविजानी सुनीति चौहान और करा लिसा लगा आवाज से। तो यस माई डियर लिसनर्स, प्रोग्राम ते आखिरी गीत इकला बजावले हुई जैसे तो आज लगा आज इस चॉइस रोमांटिक सॉन्ग्स कंधे अपनी खान मोस्टली कंटेम्प्रेरी म्यूजिक यू नो रोमांटिक सॉन्ग्स वाले भी म्यूजिक तो लोग कंटेम्प्रेरी होनी थी शे, लेकिन जो आखिरी गाना है जो मैं आप सबके लिए बजाने वाली हूँ वो कंटेम्प्रेरी से थोड़ा हटके है। इसमें एक बहुत सी खूबसूरत सूफियाना अंदाज ही कोई वो इतु ऐसे सूफियाना रंग है इस गीत में। तो इतु गाना लोगों ते ही मैं अपनी खान के छाड़ी दी बोले ऐसे बिकॉज टाइम हैज कम फॉर मी टू प्ले द फाइनल ट्रैक इन आवर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम आरजेस चॉइस। इसी खूबसूरत नगमे के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन और इन्हीं का ही एफ एम ट्रकोपेन से जुड़े रहे बिकॉज राइट आफ्टर दिस प्रोग्राम एफ एम रेनबो भी आब। तो एफ एम रेनबो लो अपनी खान कनेक्ट हो जाब और एफ एम ट्रकोपेन तो शाम 3 बजे दे वापस लेके आएगा ढेर सारी मस्ती, बहुत सारा प्रोग्राम्स एंड ऑफकोर्स बहुत सारी बातें। तो अंटिल देन प्लीज इंजॉय दिस लास्ट ट्रैक एंड अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए एंड ऑलवेज स्टे ट्यून इन टू एफ एम ट्रकोपेन। दिस इज योर आर जे टिया। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई प्रोग्राम एंड द लास्ट सॉन्ग आई एम गोना प्ले Yet for you is from the movie Bhag Jaunee. Yes, Bhag Jaunee ase and the track is called Kinna Sona. Gana kushe Sunil Kamnath. Our music dishe Mithun. Lyrics likhe Amitabh Verma. Aur kwanishna is bahut hi khoobsurat nagme ke saath main aap sabse alvida chahungi. Enjoy and have a wonderful Sunday.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का

0: ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ जी, आकाशवाणी का FM रेनबो म्यूजिकली और शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका होता है आपको इंतजार, और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार। और दोस्तों, ये रविवार की जो दोपहर होती है ना, अपने आप में बड़ी खास होती है। क्यों? क्योंकि एक तो आप फुर्सत में होते हैं थोड़ा, बाकी दिनों की तुलना में बहुत सारे काम जो है सुबह से आप सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम से करते हैं, तो आराम से करते करते भी लगभग अब तक सारे काम हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोग अब तक लंच कर रहे होते हैं और भी कुछ कुछ कामों में प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जिनको आप कई दिनों से प्लान करते हैं, सोचते हैं कि रविवार आएगा तो ये किया जाएगा। तो कुछ ऐसे जो पल होते हैं, आप उन पलों को आप हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं कि आज क्या खास होने वाला है, क्या खास करने वाले हैं। लेकिन अगर आज खास क्या है उसकी हम बात करें, तो अभी समाचार जब हम सुन रहे थे तो आखिर में उन्होंने कहा था कि दो मुकाबले होने वाले हैं। एक तो जो T20 विश्व कप चल रहा है महिलाओं का, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला होने वाला है 7 बजे शाम को, और उसके ही आसपास एक और मुकाबला होने वाला है आयरलैंड और इंडिया के बीच में। क्यों? क्योंकि ये मैच खास है। खास इसलिए है कि पिछले मैच में जिस तरह से भारतीय टीम और आयरलैंड के बीच में टक्कर हुई थी और आयरलैंड ने क्या कमाल का खेल दिखाया था, तो उससे आज का ये मैच हो जाता है बहुत ही खास। और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा कि जो हमारी युवा सनसनी है वैभव सूर्यवंशी, वो इस मुकाबले में खेलते हैं कि नहीं। तो इन सभी का जवाब मिलेगा हमको शाम को। लेकिन आपके जो सवाल हम तक पहुंचते हैं, हम उनके जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है, इसमें सिर्फ आपके सवाल नहीं पहुंचते हैं बल्कि आपकी फरमाइशें पहुंचती हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। तो आपका वाला सॉन्ग हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमारे वो साथी जो इस प्रोग्राम में अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860707070, 9868107070। ये हमारा नंबर है जिस पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम अब पहुंचाने वाले हैं आप तक वो गाना जिसकी फरमाइश प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आप लोगों की तरफ से आनी शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम की शुरुआत भी आपकी फरमाइशों से की जाए और उनको पूरा करते हुए की जाए। तो अगला जो प्रोग्राम में गीत आप तक पहुँचने वाला है वो है फिल्म कयामत से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और अब यादों से निकलकर आपकी बातों में आते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं ऐसी जिन्हें आपने हम तक पहुंचाया है। और सबसे पहला जो मैसेज है वो आया है गजानन कुमार का, महाराजगंज यूपी से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। कहा है कि फिल्म का नाम है स्टंटमैन और गीत है इजहार करती है दीवानगी का ये आंखें आईना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत आपने इसकी फरमाइश की है। और साथ ही साथ मैसेज जो हमें भेजने वाले हमारे साथी हैं उनका नाम है हरकिरण सिंह फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। इन्होंने भी बोला है अपने मैसेज में कि सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, और कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और एक गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की। तो दोस्त, आपकी फरमाइश हमने कोशिश की, लेकिन वो गीत अभी तो हम नहीं आप तक पहुँचा पा रहे हैं। और लगभग यही हम कहना चाहेंगे आकांक्षा को भी, जो मुंबई से हमें मैसेज भेजा है उन्होंने, और एक गाना फिल्म जब वी मेट से सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की। और मैसेज भेजा है हमें किसने, इनका नाम है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है, और फरमाइशें लगातार हम तक पहुंच रही हैं।

ये एक चीज़ है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये दूसरे खोरवाल साहब हैं, इनमें जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल हैं, ये भी एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं। और मैसेज लिखा है हमें लक्ष्मी, अरविंद, निशा, प्रमोद और मम्मी पापा ने उनके ग्राम टुंडा से, ब्लॉक यमकेश्वर, ज़िला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। फरमाइशें और भी हम तक पहुंची हैं, और उन फरमाइशों में जिनकी फरमाइशें हैं उनका नाम है अमरदीप कुमार, कुप्पमपट्टी जलाकंडापुरम बाजार, सेलम ज़िला, तमिलनाडु से। और बारिश का इंतज़ार था, बरसात हो रही है, बरसात होने दे, ये इन्होंने कहा है। और वहाँ पर शायद बारिश हो रही है तो उसका इन्होंने जिक्र किया, तो बहुत अच्छा लगा दोस्त आपकी ये बात सुनकर कि वहाँ बारिश हो रही है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब हो, थोड़ा गर्मी से राहत मिले। मनमोहन सिंह उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के मंडवा हसनपुर गांव से हमें मैसेज लिखते हैं, और उन्होंने भी बारिश के लिए ही गाना सुनने की फरमाइश की है, और कई गाने की उन्होंने फरमाइश की है एक ही मैसेज में। तो दोस्त, हम ढूंढेंगे आपकी पसंद के जो गीत हैं उनको और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राहत और गज़ल का मैसेज आया है नेहटौर बिजनौर से, HMF स्कूल से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। पंकज जी हैं अमरावती महाराष्ट्र से, लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम में किसी भी गीत में नाम शामिल करो। तो दोस्त बिल्कुल, देखिए आपने कहा और हमने शामिल कर लिया नाम। और हमारे पुराने दोस्त हैं सौरभ बनेजा, इनका भी मैसेज आया है, इनकी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, बस शो को एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप सभी की जो फरमाइशें हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये गाना आप तक पहुँचा रहे हैं।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और आपकी फरमाइशें लगातार आप तक पहुंच रहे हैं और आपके मैसेजेस भी लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आपके और मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें हम तक पहुंचाई हैं। बहुत सारी बातें आपने। नरेंद्र सोनी साहब का मैसेज आया है देवगढ़ पटियाला से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। इसके अलावा जैद और हुडा का मैसेज आया है गाजियाबाद यूपी से, इन्होंने भी कहा है कि एक गाने सुनवा दीजिए इनकी पसंद का। और ये गाना इन्होंने थोड़ा पुराना भी इन्होंने सुनने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है ये है प्रमिला कर्नाटका का, और अच्छा इनकी पसंद का तो गीत अभी जो हम सुन रहे थे वो इनकी ही पसंद का था जो हमने आप तक पहुंचाया। और सलमा बेगम मोहम्मद इम्तियाज़ का भी मैसेज आया है जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से, इन्होंने गाने की फरमाइश की है। और कुछ अब ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं जिनकी फरमाइशें पूरी हो गई हैं, उन्होंने धन्यवाद भी बोला है। अगला जो मैसेज है इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनकी जो फोटो है उसके पास से हमें अतार सिंह अहलावत नाम दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और इला और सौरभ का जर्मनी से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और दोस्त बिल्कुल हम आपकी फरमाइशों को कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचे, और उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने की जो ये कोशिश है उसमें हम उन गानों को ढूंढ भी रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। प्रकाश मांडवी राजस्थान से लिखा इन्होंने कि हमें भी एक गाना सुनना है। और यूपी के हकीमगंज से इन्होंने मैसेज किया है, इनका नाम है आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख और इमरान शेख बादशाह, इन्होंने अपना मैसेज किया है और गाना सुनने की फरमाइश की है। वंदना कुमारी का नोएडा से मैसेज आया है, और मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, इनका नाम है आफसा खानम धामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। दोस्तों आपकी फरमाइशें हम तक आती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बातें भी साथ साथ हमें कुछ बताएं ना, जैसे हमने बात की कि आज का दिन बहुत ही खास है, क्या खास करने वाले हैं आप? आज नहीं अगर आप बता रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी बता सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो दिन है वो बहुत ही खास होने वाले हैं। एक तो कैच द रेन जो मुहिम है हम उसकी बात करते ही हैं कि वर्षा का जो जल है उसका संचय करें, साथ ही ये वो समय होता है जब आप पौधे लगा सकते हैं और पौधे लगाकर अपने पर्यावरण को अपने वातावरण को बहुत बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अब देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर इस गर्मी में हमें जब पेड़ की छाया मिलती तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून आता है, और उस पेड़ की छाया में हम सोचते हैं कि वाह क्या बात है, किसने लगाया होगा, कब लगाया होगा, और आज वो हमें कितनी छाया दे रहा है, न सिर्फ छाया बल्कि फल दे रहा है और फूल दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हम भी क्यों ना कुछ ऐसे प्रयास करें जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं जब वो किसी पेड़ की छाया में जाएं तो उनको भी ये मन में आए कि कितना अच्छा काम किया होगा किसी ने कभी, तो हम वो काम कर सकते हैं। सलीम

अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से लिखते हैं, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है और फरमाइशें लगातार बढ़ रही हैं और हम भी बढ़ रहे हैं उन फरमाइशों को पूरा करने की तरफ। एक मैसेज है, इनका नाम है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इनका मैसेज है। इनकी भी गाने की फरमाइश है और गर्मी बहुत लग रही है। प्रदीप डोगरा साहब, आपको, आपने चंडीगढ़ से लिखा है कि गर्मी बहुत है, कुछ गाना सुनाइए। तो दोस्त, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और एक पुराना गाना आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि पुराने गानों की भी फरमाइश हम तक आती है और ये गाना हमने आपके लिए निकाल लिया है।

0: और आप जो बातें कह रहे हैं खास खास, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070, 9868107070। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि आपने और कौन सी बातें हम तक पहुंचाई और कौन से गीत हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
6: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
7: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
8: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
7: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
9: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
10: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
11: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
10: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
11: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
12: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म साजन से ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आपकी फरमाइश पर ये आधारित था गीत। और अब एक बार फिर से चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें लिखकर आपने हम तक पहुंचा दी हैं। मैसेज हम तक आया है, इनका नाम है, नाम कहाँ है, नाम इनका है, ढूंढ रहा हूँ दोस्त आपका नाम, मिल नहीं रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी। सुनील फांगसो, इनका मैसेज आया है नागालैंड से और इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम सुन रहे हैं और गाने जो हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज आया है। इन्होंने कहा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए, कई फिल्मों के नाम इन्होंने भेजे हैं और उनमें से कोई एक कहा है कि इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म का कोई एक गाना सुना दीजिए। तो बिल्कुल दोस्त, हम कोशिश करेंगे कि आपने जो फरमाइश हम तक पहुँचाई है उस फरमाइश में हम शामिल हों, आपकी पसंद का वो गीत ढूंढें और आप तक पहुंचाएं। गुड्डूधागढ़ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिखते हैं कि बेड़ावन गांव से बारिश का कोई सा भी गाना बता दीजिए, मैं तो सारे गाने इतने एंजॉय करता हूं कि सबकी फरमाइश अच्छी लगती है। बिल्कुल दोस्त, यही होता है कि हम लोग गाने जितने भी आते हैं ना, आपकी फरमाइशें, हर फरमाइश के साथ कोई ना कोई बात होती है, कोई कहानी होती है। हाँ, कई बार आप उन कहानियों को बताते हैं, कई बार बिना बताए वो हम तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हाँ, जब आप सुनते होंगे तो निश्चित रूप से उन कहानियों में, उस फ्लैशबैक में हम उन गीतों के साथ चले जाते हैं। और गीत तो वैसे भी कहा जाता है कि संगीत तो हमारे दिल को इतना सुकून देता है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, कितने भी स्ट्रेस में हो, जब अपनी पसंद का गीत सुनते हैं तो फिर हमारा मन जो है झूमने लगता है और हम खुश हो जाते हैं। सुनीता शर्मा का शानीमार बाग से गाना आया है, एक फरमाइश की है इन्होंने, और इन्होंने मैसेज किया है राहुल राउत का, भंडारा महाराष्ट्र से लिखा है, जय भीम सर, मैं पहली बार आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया हो तो मेरा नाम लीजिए। बिल्कुल जी, मैसेज आपका पहुँच गया और आपका नाम भी हमने ले लिया। अगला मैसेज है, इन्होंने कहा है, क्या नाम है आपका, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ दोस्त, अच्छा हरकिरण जी, ये फर्रुखाबाद से आपने फिर से मैसेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और मैसेज किया है हमें खिलची पूर्व जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। और हमारे रेगुलर लिस्नर हैं राजेश भल्ला जी, एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से, इन्होंने कहा है कि कोई गाना सुना दीजिए आरडी वर्मन साहब की आवाज़ में, बिजली बार बार आ रही है, जा रही है मेरठ में, और इधर बिजली आई उधर एफएम चल पड़ा और आपकी आवाज़ आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका, आप इतने अच्छे से मैसेज करते हैं और जो छोटी छोटी डिटेल्स आप पहुंचाते हैं ना हमें, उनको जानकर भी अच्छा लगता है। कभी आप रास्ते में होते हैं, कभी घर पर होते हैं, कभी कहीं होते हैं, लेकिन आप लगातार हमें सुनते हैं और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि मैसेज भी हम तक पहुंचाते हैं, तो उसको जानकर भी, उसको पढ़कर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगला मैसेज है, इनका नाम है अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से, इनके साथ साथ ओखला संगम विहार दिल्ली से भी इनके साथी हैं रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। तो चलिए आपके मैसेजेस और शामिल करेंगे, फिलहाल शामिल करते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं आपके साथ राजेश, और दोस्तों बिल्कुल आपका भी साथ हमारे बिल्कुल साथ साथ है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, हम उनको अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं, और आपकी जो फरमाइशें हैं उनको हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और गीत, कुछ और बातें इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर एक बार फिर से। सत श्री अकाल राजेश भाजी, सत श्री अकाल जी, तुसीं किवें हो? असीं वधिया जी, तुहाडा की हाल है? प्रदीप सलूजा और संगीत सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से मैसेज किया है, कह रहे हैं कि भाजी टाइम आगे बढ़ रहा है तो नाम या सॉन्ग ऑन एयर कर दो। तो बिल्कुल जी, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे ही अगला मैसेज जो है आपसे पहले वाला उस तक पहुंचे, उसके बाद आपके मैसेज तक पहुंचे। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो थोड़ा सा इंतज़ार किया आपने और देखिए हम आपके मैसेज तक पहुंच गए। अगला जो मैसेज है वो है किसका है ये? कस्बा गन्नौर UP से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का। और अगला जो मैसेज है ये है गाँव मलवाला से, जिला बठिंडा से बिहला सिंह फौजी, गुरनूर, निमृत सतविंदर कौर, बलराज मान और बलकार सिंह मान, इनका मैसेज है और इन्होंने गाना सुनने की फरमाइश की है। साथ ही फरमाइशें कई और भी हम तक पहुंची हैं। डॉली का मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है कि गाने पसंद आ रहे हैं, आपकी सलाह भी कि बारिश में मौसम का यूज़ करें, प्लांट लगाएं, पानी को सेव कर सकते हैं। बिल्कुल एग्री इन्होंने किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और ये सहमति सिर्फ सहमति ना हो बल्कि इस सहमति पर काम भी हो, और हम जो है ये मान के चले कि हर साल हमने इस मानसून के समय में ऐसा ज़रूर तय करें कि इतने पेड़ तो कम से कम लगाने ही हैं, और जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारी प्रकृति और ज़्यादा सुंदर लगेगी और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर बनेगी। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश, नागनपुरी, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का मैसेज आया है। इन्होंने लिखा है कि हमें आपकी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। बिल्कुल जी, आपकी पसंद में हमारी पसंद है, और जितने भी गीत अब तक हमने आप तक पहुँचाए हैं उनको सुनकर लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी भी पसंद है, और हम जैसे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे कि हाँ ये गाना तो उन्हें भी पसंद था। और इसी तरह की एक पसंद अपनी भेज रही हैं भगवती नई दिल्ली से, और इन्होंने भी अपनी फरमाइश पहुंचाई है और उसको कहा है कि इसको बिल्कुल जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और साथ ही साथ एक बात और लिखी है कि इन्होंने लिखा है कि मैंने घर में कई पेड़ लगाए हैं लेकिन इतनी बंदर हैं कि गमले हो, पेड़ हो, कली हो, सब तोड़ देते। तो दोस्त क्या होता है ना कि जब हम देखते हैं ना प्रकृति को, तो जब जंगल कम होंगे तो जंगल के जो जानवर हैं उनको भी तो कहीं जाना होगा, थोड़ा सा हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा प्रबंध कर सकते हैं जहाँ पर कम से कम ऐसे जीव आएँ, लेकिन इन जीवों के साथ भी हमें कहीं ना कहीं सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, इनकी जो समस्याएँ हैं उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। अगला जो मैसेज आया है इनका नाम है अनुजा शर्मा मेरठ से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक और भी पहुँच रही हैं। परमार, अमित कमलेश भाई, गांव सरसिया, और इन्होंने ज़िला अमरेली से लिखा है कि कोई गाना प्ले कर दीजिए, नाम ले लीजिए। बिल्कुल जी, आपका नाम हमने ले लिया है। शिव का मैसेज आया है मेरठ से, इन्होंने कहा है कि कोई कॉमेडी गाना चला दीजिए जिससे मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो दोस्त कई लोगों के ना मन हल्का करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ कॉमेडी गाना सुनकर हल्का होता है, किसी का सैड गाना सुनकर भी मन हल्का होता है, और कोई जब डांस का कोई नंबर मिलता है ना तो उसके साथ भी थिरक लेते हैं और थोड़े हल्के हो जाते हैं। अगला जो मैसेज है इनका नाम है हर्ष AK पांडे, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से इनका मैसेज आया है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। दिनेश सिंह का मैसेज आया है, इन्होंने गोकुलपुरी दिल्ली से मैसेज भेजा है और अजीत कुमार का भी मैसेज आया है समस्तीपुर बिहार से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी आपका भी मैसेज आया है, कार्यक्रम में आपने अपनी बात लिखी है और इन्होंने गाने की फरमाइश भी की है। साथ ही साथ मैसेज हमें किया है वेस्ट बंगाल के इस्लामपुर से सादिर ने, इन्होंने कहा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए। और जमशेदपुर झारखंड सुपाहीशाही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती और देवेंद्र जी ने इनमें इन्होंने अपना गाना सुनने के लिए एक बात अपनी लिखी है और साथ साथ प्रोग्राम में जो गीत चल रहे हैं उनको भी इनको इन्हें पसंद आ रहे हैं उसकी भी इन्होंने बात लिखी है। पुनीत रावत का ऋषिकेश से मैसेज आया है और मैसेज भेजने वालों में हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिन, ऋतिक, बलवीर सिंह। तो चलिए आप लोगों की पसंद का एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद वापस आते हैं और कुछ और मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।

और दोस्तों इस गीत के साथ ही अब आपको बताते चलें कि अगले कुछ घंटों में आप एफएम रेनबो पर कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 2 बजे से होगा कार्यक्रम छोटे उस्ताद, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने साथियों की बातें होंगी और उस बातचीत को आप तक लेकर पहुंचेंगे हमारे साथी साइमा। और 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय है क्लब फुट कॉजेज एंड क्योर। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अभी रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड के तौर पर इसमें काम कर रहे हैं सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 3 बजे से। इसके बाद 4:05 से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस। कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं, उन सवालों के सही जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। साइमा इस प्रोग्राम में आपके साथ होंगी। और 5:05 पर आप सुन पाएंगे शहर के तमाम हलचलों तमाम गतिविधियों को समेटता कार्यक्रम जिसका नाम है सिटी लाइट्स, और मनीष आजाद इस प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। फिलहाल आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, यानी कि आपके जो मैसेजेस हैं चलिए उनको जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार खयाला से दिल्ली से इन्होंने मैसेज भेजा है। मैसेज भेजने वालों में हैं कुछ और नाम, और उनके नाम जो हैं मैं बिल्कुल आप तक पहुंचा रहा हूं। गोविंद पांडे जी प्रयागराज से इन्होंने एक गाने की फरमाइश की। तो दोस्त पिछले घंटे में हमने वो गीत आप सभी तक पहुंचाया था। और मनोज कुमार, नरेश कुमार और इनके पापा हैं रघुनाथ पंडित जी बिहार से इन्होंने लिखा है, एक गाना सुनने की फरमाइश की है। साथ ही साथ मैसेज किया है हमें प्रयागराज से, एक हमारे साथी हैं, आपका नाम ढूंढ रहा हूं मैं लेकिन नाम में मिल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मैसेज किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैसेज भेजा है हमें मोहम्मद रागिब रेजा, मोहम्मद आकिब रेजा और दानिश खान ने आज़ाद नगर अररिया बिहार से। तो दोस्तों आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते आपकी ही पसंद का एक और गीत हमने निकाल लिया है, लेकिन हाँ अब बातचीत जो आपकी इतनी सारी आई उसमें ये निकल कर आया है कि हम लोग जो ये मानसून दस्तक दे चुका है तो इस मानसून का पूरा लाभ उठाएं और जो हमारे कार्यक्रम है ना उसको कुछ इस तरह से बनाएं, कुछ ऐसा प्लान करें कि इस बार के मानसून को और भी बेहतर बनाएं। बारिश में भीगें लेकिन कोशिश ये करें कि कुछ पौधे भी लगाएं ताकि आने वाले समय में जब हमें धूप लगे तो वो पौधे हमें छाया दे, हमें फल दे, हमें फूल दे। तो इन सभी चीज़ों का हमें रखना है ध्यान। और चलते चलते आपकी पसंद का ये गीत आप सभी तक। नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, मैं हूं सायमा आपके साथ और लेकर आई हूं आज एक बार फिर आपके लिए प्रोग्राम आपका अपना आशियाना, आपके आशियाने से जुड़ी बातें। और जहां आशियाने की बात हो और वहां पर नन्हे मुन्नों की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल आशियाना प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं अपने छोटे उस्तादों के बारे में, क्योंकि जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं ना, अब क्या है, समर वेकेशंस ख़त्म होने जा रही हैं, अब क्या उनके लिए ख़ास है, क्या कर रहे हैं, इतनी छुट्टियों में क्या किया और कैसे वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं क्या स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इतने दिन छुट्टियां और फिर उसके बाद में देर से उठना, मौज मस्ती करना, थोड़ा सा जो कहते हैं ना टाइम टेबल, वो शिफ्ट हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ है खास बातें करते रहेंगे, लेकिन खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका अपना आशियाना और यहाँ आज हम बात कर रहे हैं अपने छोटे उस्तादों के बारे में। अब क्या है ना, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि भाई छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं और बच्चे अब दोबारा से स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इतना दिन जब स्कूल से घर में टाइम बिताया जाता है, स्कूल जाने के बजाय जब छुट्टियाँ होती हैं इंजॉय किया जाता है, वक्त घर में बिताया जाता है, ऐसे में दोबारा से स्कूल जाना और बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी एक टास्क बन जाता है, क्योंकि अभी ऐसे में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे ज़्यादातर यही सोचते हैं कि अभी काश कुछ दिन की छुट्टियां और हो जाएं, बट ऐसा नहीं होता ना। छुट्टियां ख़त्म होते होते और फिर दोबारा स्कूल जाना कितनी मज़ेदार सी चीज़ हो जाती है जब सोचते हैं कि हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बड़े परेशान होते हैं, वो नहीं जाना चाहते। अब ऐसे में क्या होता है ना कि पेरेंट्स कभी ना कभी उनको ज़रूर डांटते हैं, डपटते हैं, बोलते हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, जाना ही नहीं चाहते, तुम पहले भी ऐसा करते थे। ये जो डांटने वाली चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चों को अपसेट कर देती हैं और कहते हैं ना कि उनके दिलो दिमाग पर इन चीज़ों का असर ज़रूर जाता है। तो जब भी कभी अपने बच्चों से बात करें और स्कूल जाने के लिए उनको मेंटली दोबारा से प्रिपेयर करें, तो उनसे प्यार से बात करें, उन्हें डांटें ना, उनको डपटें ना, क्योंकि डांट टपट से कहते हैं ना कई बार चीज़ें ठीक होने के बजाय ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होती हैं बच्चों के दिलों पे, दिमाग पे, कहीं ना कहीं आपकी उस डांट का असर ज़रूर रह जाता है। ऐसे में खेलकूद के साथ उनको मनाना और उनको बड़े प्यार से समझाना कि भाई अभी देखिए दोबारा स्कूल ओपन होने वाले हैं और आपको जब स्कूल जाना है तो आपके लिए क्या कुछ ख़ास हो सकता है स्कूल में। आप अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, आप अपनी टीचर्स से मिलेंगे, आप स्कूल में खूब इंजॉय करेंगे। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चों को बहुत हद तक दोबारा से एक हौसला देती हैं। फिलहाल बातें होती रहेंगी क्या कुछ है और ख़ास, बातों में चलता रहेगा लगातार, कहते हैं ना आशियाना में इन बातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, लेकिन खूबसूरत गाने भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बने रहेंगे दिल से दिल तक।

बिल्कुल, पापा तो बैंड बजाएं, होता है ना कई बार पापा डांट देते हैं, मम्मा भी डांट देती हैं, अरे भाई अब क्या करें, मम्मा पापा ने तो डांट लगा दी। लेकिन मम्मा पापा को भी ये समझना चाहिए कि भाई बच्चे अभी स्कूल की छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, समर वेकेशंस में एंजॉय कर रहे हैं, अब दोबारा से स्कूल जाना एक जो चैलेंजिंग टास्क

बन जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मज़ेदार भी होता है, बच्चों को समझाना मनाना। और सच बताऊँ ना तो ऐसे में जो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने घर में कहते हैं ना, जो टाइम टेबल चेंज किया होता है उसको दोबारा से रूटीन में लाना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जब स्कूल खुलने की बात आती है तो कुछ दिन पहले से ही आप ना धीरे धीरे से बच्चों के लिए वक्त निकालें और बच्चों को समझाएं कि आपको स्कूल जाने के लिए कैसे चीज़ों को चेंज करना है। जो आपने मोबाइल टाइम या स्क्रीन टाइम जो उनका बढ़ा दिया है उसको धीरे धीरे कम करें। गेमिंग्स अगर वो बच्चे अपने आपके साथ मिलके खेलते हैं या घर में गेमिंग्स खेलते हैं, गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस टाइम को कम करें। और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे बच्चे जब देखते हैं ना कि अभी घर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों के साथ बच्चों को इन्जॉय करने में मज़ा आने लगता है और फिर सोचते हैं कि भाई स्कूल जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे और खेलना कूदना होगा, खूब मौज मस्ती होगी। और चीजें इसी तरह से ना कहीं चेंज होती चली जाती हैं। फिलहाल समर वेकेशंस और समर वेकेशंस का एंड, और ऐसे में आपके लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क और बच्चों के लिए भी मन को अपने मनाना, अपने मूड को समझना और फिर उसके बाद में स्कूल दोबारा से जाना, सच में दोबारा से पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी होता तो है ना कहीं कि बच्चे अब जाएंगे, हम भी थोड़ा सा अपने कामों को देखेंगे, बच्चे अपने स्कूल को देखेंगे। और कभी कभी बच्चों को भी मिस करते हैं, बच्चे पेरेंट्स को मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने की ज़रूरत होती है, ना कि डांटने की। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
7: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
8: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
9: एक छोटे से ब्रेक के बाद सायमा फिर आपके साथ लेकर आई है आपके लिए प्रोग्राम आपका अपना आशियाना, और खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम आशियाना, मैं हुसैम आपके साथ। और कहते हैं ना, जहाँ छोटे बच्चों की बात हो और बच्चों को स्कूल भेजना हो, बच्चों को ट्यूशन भेजना हो, बच्चों को दोबारा से तैयार करना हो, मेंटली तैयार करना हो, प्रिपेयर करना हो कि भाई अब आपको स्कूल जाना है, तो ऐसे में आप उनको ना थोड़ा सा लालच तो ज़रूर दे सकते हैं। कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। फिलहाल कहीं कहीं लालच अच्छा भी होता है। आप बिल्कुल बच्चों को बोल सकते हैं कि चलिए आज आप स्कूल जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद में हम शाम में कहीं घूमने चलेंगे, या फिर हम शाम में एक अच्छा वाला आइसक्रीम खाएंगे, या फिर हम शाम में कुछ ख़ास करेंगे जो आपके बच्चों को पसंद हो। और इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी थोड़ी जो बच्चों को पसंद होती हैं, आप कहीं ना कहीं उन बातों के ज़रिए बच्चों को, कहते हैं ना, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं। और कई बार होता है बच्चे जाने के लिए मना करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। कभी आपने इसके पीछे का रीज़न जानने की या पहचानने की कोशिश की है? बच्चों से कभी आप बात करते हैं अपने घर में कि भाई आप अगर स्कूल नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते? कई बार होता है ना बच्चे मना करते हैं और फिर हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। कई बार होता है ऐसा सब कुछ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि बच्चों का स्कूल का काम पूरा नहीं होता या उनका हॉलीडे होमवर्क कहीं ना कहीं छूट गया होता है। तो कहते हैं ना कि जब आप उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखते हैं और आप उनका साथ देते हुए उन्हें नज़र आते हैं तो बच्चे कभी भी नहीं डरते और हमेशा अपनी बात खुल के बताते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। और ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं आके बता पाते। कई बार बच्चे उनको स्कूल में कुछ अलग से, बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें बुली करते हैं, या फिर कहते हैं ना कि अपना एक अलग से ग्रुप बना लेना और बच्चों को बार बार परेशान करना। और बच्चे इन चीज़ों को

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हूँ आपके साथ और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना आशियाना और आशियाना में आपसे बात हो रही है आपके जो नन्हे मुन्ने हैं ना उनके रिगार्डिंग। भैया उनको स्कूल भेजना है वापस से समर वेकेशन कहते हैं ना कि कह रही है भैया अब आपको थम जाना चाहिए रुक जाना चाहिए अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है इसके साथ साथ धीरे धीरे जो देर रात सोने की और देर तक सुबह सोने की जो आदत पड़ गई है उसको भी अभी वक्त है धीरे धीरे बदलने का। क्योंकि अगर एक जल्दी से झटके के साथ आप कहें कि भई आज स्कूल जाना है और फौरन से उठ जाओ तो बच्चे भी परेशान और आप भी परेशान। जब बच्चों का ही मूड नहीं होगा स्कूल जाने का तो आप कैसे खुद को सेटिस्फाइड करेंगे। आप सोचेंगे ना कि काश हमने थोड़ा सा वक्त दे दिया होता बच्चों को और हम इन्हें संभाल लेते हम पहले से इन्हें बता देते कि भई अब अपना टाइम चेंज करो थोड़ा जल्दी सोना है जल्दी उठना है। घर में आखिरी के जो दिन है ना कुछ दिन इसमें अगर हम थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ध्यान दे दें उनके उठने बैठने के ऊपर सोने के ऊपर जागने के ऊपर तो शायद बच्चे फिर यही सोचेंगे कि भाई हाँ वाकई हमें स्कूल जाना है थोड़ा सा हमें जो टाइम है अपना वो चेंज करने की ज़रूरत है। और बच्चों का जो स्कूल का वर्क है इसके साथ साथ उनका पढ़ाई का जो एक कहते हैं ना जो शेड्यूल हम बना करके रखते हैं उसको चेंज करना बच्चों का खाना पीना और बच्चों के साथ मौज मस्ती करना ये सब तो चलता रहता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक।

ऑल इज़ वेल. सीरियसली जब सोचा जाए सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही होता है. और जहाँ पर हम बात करें आपका घर में वक्त बिताने का, जो आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं ना, उसमें ज़रूरी है कि आप ख़ुद को सोचें कि भाई अगर हम बच्चों की जगह होते तो हम क्या करते. और फ़िलहाल उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने ये जो छुट्टियाँ हैं ना बहुत अच्छे से इंजॉय करी होंगी. और एक्टिविटीज़ की भी जहाँ तक बात करूँ कि बच्चे बेशक स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन एक्टिविटीज़ हमेशा पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर करवाई जाएं. और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना बच्चों के लिए बेहद ख़ास होती हैं. होप्स हो कि जो बच्चे हैं वो भी अब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे. जैसे कुछ बच्चे अपनी स्विमिंग क्लासेस ले रहे होंगे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस ले रहे होंगे. होता है ना, बच्चे समर वेकेशन को पूरा यूटिलाइज करते हैं, साथ में घूमना, बच्चों के साथ इंजॉय करना. उनकी क्लासेस की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स भी बड़ी शिद्दत से अपने बच्चों के साथ उन क्लासेस को इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं. और कहते हैं ना, ये जो एक पेरेंट्स का और बच्चों का बॉन्ड होता है ये सच्ची में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है. कैसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता. अब देखिए ना, यहाँ पर अगर वक्त की बात करूँ तो कैसे कैसे ये घंटा बीतने वाला है. और वक्त की कमी भी है. फिलहाल कोशिश यही रहेगी कि आपसे लगातार बातें होती रहें, खूबसूरत गानों का सफ़र भी इसी तरह प्रोग्राम में बना रहे, और आपके जो बच्चे हैं ना वो आपके साथ हर वक्त बहुत अच्छे से बिताएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, आप ही और आपके बच्चे भी एक दूसरे के साथ. फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और खूबसूरत गानों का सफ़र. फिलहाल एक और प्यारा सा गाना आपके लिए कहीं मचाई, बनी रहिए आकाशवाणी रेनबो पर.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान।

बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका अपना आशियाना। अब वक्त यह कमी मेरे पास, चार से पांच फिर रहूंगी आपके साथ प्रोग्राम रेनबो जूनियर्स लेकर के। तब तक यहाँ दीजिए साइमा को इजाजत, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए, दिल से दिल तक।

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 엔터테인먼트 FM 드래그밴 FM 103 메가헤르츠
1: जी हाँ, अपने कन हुनिए से आकाशवाणी एफएम ट्रैगबन 110 मेगाहर्ट्ज हुनी ढगा सब बिल्ला का अपना कन सब के स्वागत करे से हमें कला प्रोग्राम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम टे तो अपना कन सब के स्वागत करी गिना प्रोग्राम शुरू करी दिया से और जुड़ी अपना कला एसएमएस लगा द्वारा ही गिना प्रोग्राम टे शामिल हो बोले मन से कोई मने अपना खान सब के प्रोग्राम टे स्वागत करे और लिखी गिना पठाबी और मुइयाते बरा खुशी बरा अपना खला मैसेजेस खान पूरी दिया हो बो तो हुरीबो बसीरा फिल्म की गेट गए से आशा भोसले किशोर कुमार

मासूम फ्लेमत अपनालोखे अनुप घोषाल लगा वास्तु हुनिले हुनी थका सब बिला प्रोग्राम सेस करू बुले ला समय दिपुंची जाय से तो अपना खन सब के जनाई दिया से इते अपरा लो पसते हमय 7:10 ले नागमीस ते खबर दिया हुनी बो और आमी खन अकुल कुरा बो 9:30 मुई अकुल लोई किना है बो हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम प्रोग्राम सेस करू बो कारने हुनी बो द बर्निंग ट्रेन फिल्म की गेट गए से आशा भोसले और किशोर कुमार

0: FM 드래그밴 103MHz 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103MHz
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
2: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की।

0: उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
5: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
4: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
5: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है.
4: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermine said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
6: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative.
4: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. The distinction has been awarded to Prime Minister Modi in recognition of his green leadership, his efforts towards advancing the interests of developing countries, and his long-standing commitment to promoting the blue economy, climate action, the sustainable management of ocean resources, and the developmental aspirations of small island developing states. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "Both India and Seychelles seek a world where development is more inclusive and international institutions reflect contemporary realities, reaffirming their commitment to advancing the interests of the Global South."
5: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
4: Mr. Modi said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent.
5: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
4: The Prime Minister said it is a special honour to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked the President and the people of Seychelles for honouring him with the Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon. Mr. Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the East African island nation. Meanwhile, Lok Sabha Speaker Om Birla and several union ministers, including Amit Shah, S. Jaishankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for the leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister Modi has said that power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time.
5: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
4: Mr. Modi also spoke about preserving human creativity in the age of technology and artificial intelligence. He said Nalanda University has found a way to achieve this and is shaping India's future in a new avatar. Recalling that he had dedicated the university's new campus to the nation 2 years ago, Mr. Modi said it has revived the ancient tradition of Shastrarth or intellectual discourse. India Today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon people to work towards making the country healthy and free from drug addiction under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Radhakrishnan was addressing the Foundation Day celebrations of the Rajiv Gandhi University of Health Sciences alongside the Nasha Mukt Bharat Abhiyan program at the Kantirava Outdoor Stadium in Bengaluru. The Vice President said awareness, responsibility and collective action are essential to build a healthier society and a stronger nation. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID. The system will integrate data from multiple government platforms, generate risk alerts and monitor key indicators including vaccination, malnutrition, school enrollment and dropout rates. Four traditional agricultural products from Madhya Pradesh have been granted the geographical indication or GI tag. They are Sitahi Kutki, Nagadaman Kutki, Banagani Arhar and Chatriya Dhan. The State Agriculture Department described the recognition as a major achievement for farmers. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighboring Arunachal Pradesh. We have more from our correspondent.
3: In Assam, the raging floodwaters of the Simen River in Dhemaji district have washed away a portion of the crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operation in Ujjalpur village under the Mo Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. While no casualties or loss of life have been reported so far, significant loss of property and livestock have been recorded across the affected region. Meanwhile, Assam Chief Minister Dr. Himanta Sharma stated that the situation is being closely monitored. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
4: The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met Department said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The Met Department further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for tomorrow. Europe is continuing to experience a record-breaking heat wave, with several countries including France, Germany and the Czech Republic reporting new temperature highs over the weekend. French health officials said there have been around 1,000 deaths since Wednesday as the intense heat wave continues to scorch the country. Out of these, 85% of deaths were of the elderly. Parts of France have topped 40 degrees Celsius this week, piling pressure on hospitals and first responders amid a surge in emergency call-outs. Temperatures have also been topping 40 degrees Celsius in Germany and the Czech Republic. Moreover, in Hungary, a nuclear power plant has been affected by rising water temperatures in the nearby Danube River, causing the cooling water temperature to increase and impacting the operation of some reactors. In France, 11 people on board were killed after a skydiving plane crashed in the northeastern region of France today. Morte et Moselle representative Yves Segui said that the aircraft went down near the city of Nancy. Emergency services rushed to the scene while authorities began collecting witness statements as part of the investigation into the crash. In Saudi Arabia, 14 people were killed after a helicopter belonging to country's oil giant Aramco crashed today in Ras Tanura on its eastern coast on the Gulf west of the Strait of Hormuz. Aramco had resumed crude oil loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly 4 months due to the West Asia conflict. According to the Saudi Ministry of Energy, all 14 victims were Saudi nationals. A full investigation has been launched to determine the cause of the crash. In the ICC Women's T20 World Cup, India have set a target of 171 runs for Australia in their final, the must-win Group A match at Lord's in London. In reply, Australia were 35 for 1 in 4.4 overs when reports last came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And in men's cricket, hosts Ireland have set a target of 155 runs for India in the second and the final T20 international of the two-match series in Belfast. In reply, India were 54 for 4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 international in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.

0: Dipilaka kunba sawal thakile toll free number 1-800-1166-660 call koribi
1: Dipi haribo desh jitibo
2: Itu jankari NTEP bra DSA
3: Hello
4: Rajesh ji main police thane se bol raha hu
3: phir se
5: aap digital arrest mein ho दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
6: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
6: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: सर 2 लाख
7: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
5: अरे
3: काट दिया
7: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांद हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी।

शराबी फिल्म के गीत लौटे हैं आकाशवाणी एफ एम ट्रैगपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिया आज कारण प्रसेस कर दिया से उन्हीं टाइम सब बिल्क आम खाना को लग कर हम आहियाकाली फुजिर 6 बजे अपना खान सब लगा राति सबसे भल राति हबी कई किना विश कर दिया से गुड नाइट।